0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबेद और सोफिया जमशेद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब।
1: अरे वसीमा साहिबा, ये वाटर गन क्यों ले आई है स्टूडियो में?
0: वाटर गन नहीं, गन्स हैं। मैंने तो वाटर बॉल भी लाना था ताकि उसको फोड़ के जो पानी निकले उससे आपको भगाऊं और गर्मी भगाऊं। इसे आप वसीमा सुनाएंगी पानी कहानी।
1: जी, आज पानी की कहानी भी सुनेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। पहले होगी एक बड़ी नई नवेली और ताज़ा तरीन रिपोर्ट।
0: रुके रुके, मैं समझ गई, ये रिपोर्ट होगी पाकिस्तान जापान फ्रेंडशिप फेस्टिवल 2026 पर। जी सामिन, आजकल टोक्यो में मुनाक़िदा इस चार रोज़ा मेले के पहले दिन पर रिपोर्ट सुनते हैं खलील शेराजी की ज़ुबानी।
2: जी दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं टोक्यो के उएनो पार्क में। गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ख़वातीन हज़रात यहां पे जमा हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पे सजा है पाकिस्तान जापान फ्रेंडशिप फेस्टिवल का मेला।
3: यहां पाकिस्तानी खानों के स्टाल सजे हुए हैं और पाकिस्तानी सकाफत के रंग नुमाया हैं।
2: तो दोस्तों, अभी मेरे पीछे जो मुजाहरा किया जा रहा है, ये तलवार रक्स है। तलवार रक्स का मुजाहरा किया जा रहा है।
3: रक्स करने वालों ने समुराई लिबास ज़ेब तन कर रखा है और जापानी तलवारों के साथ अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं, और लड़ाई के मनाजिर को भी रक्स के अंदाज में पेश किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस रक्स और पाकिस्तानी तलवार रक्स में सबसे नुमाया फ़र्क लिबास का ही है।
2: जी दोस्तों, ये था तलवार डांस। तो यहाँ पे मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, पाकिस्तान से हैं, तो वो देख रहे थे बड़े निमाक के साथ। तो उनसे पूछते हैं वो पाकिस्तान में कहाँ से हैं और उन्होंने इस रक्स को कैसा पाया।
4: मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ और मुझे जापान में 3 साल हो गए, तकरीबन तीसरा साल है तकरीबन देख रहा हूँ। और बड़ा मज़े का जो है ना, मतलब ये इवेंट होता है। और अभी जो रक्स के मैंने देखा है ना, रक्स बहुत मज़े का था, बहुत कमाल का था। ये इनका ट्रेडिशनल है, जापानी कल्चर है, तो बहुत मज़े का था।
2: तो क्या महसूस हुआ इसको देखकर, क्या याद आया?
4: पुराने दौर में जो हम वैसे मूवीज़ में देखते हैं, वो सारा जो पुराना दौर है वो याद आ गया है।
3: तकरीब के दौरान मेरी मुलाकात इस इवेंट के मुंतजिम से भी हुई। मैंने उनसे इस तकरीब के इनेकाद के अखराज और मकासद के बारे में पूछा।
5: जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरिश्का शाकिर खान गौरी है, नाम थोड़ा लंबा है। असल में ये प्रोग्राम हमने 2008 से शुरू हुआ था, बेसी में शुरू हुआ था। उसके बाद हम ये इस प्रोग्राम को, ये 9वीं दफ़ा प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इसका बेसिक मकसद हमारा ये था कि मैंने जैपनीज हैं बच्चे मेरे ना, तो इन बच्चों को किसी तरीके से हम जो है अपने साथ कल्चरी जो है इनको अपने आप साथ मिलाएं। फिर ये है कि हमने इसको जश्न आज़ादी भी साथ मना लेते हैं। तो कोशिश ये होती है कि जैपनीज़ों को साथ मिल के ये जो है ना प्रोग्राम किए जाए, एक दूसरे का तावन जैसे होता है, इनका हमारा खाना है, इनके खाने हैं। जैसे आज आपने देखा है कि गेम शो से भी आए, उन्होंने यहाँ पर देखा, तो ये अप्रिशिएट होगा। तो ये पाकिस्तान का इमेज के लिए भी अच्छा है और हमारे जो बच्चे हैं वो आपस में यहाँ पर मिलें, बस यही हमारा मकसद है।
3: शाकिर साहब ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि अब कुछ जापानी नौजवान रवानी के साथ उर्दू बोलते हैं, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। लेकिन फिर उसी वक्त मेरी मुलाकात एक नौजवान से हुई जो ऐसे उर्दू बोल रहे थे।
6: मेरा नाम केंता है और मैं जापान से हूँ।
2: कैसा लगा, कब आपको पता चला कि ये इवेंट है? आप हर साल आते हैं या पहली दफ़ा आए?
6: मैं तो ये पहली दफ़ा नहीं है, मैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ आता रहता हूँ।
2: जी, क्या चीज़ आपको खींच लाती है यहाँ, क्या चीज़ यूनिक है, किस लिए आते हैं?
6: जैसे तो अभी कव्वाली का नज़ारा चल रहा हो रहा है, तो ये भी बहुत एक मुनफरिद चीज़ है ना। हाँ,
2: तो इतनी अच्छी उर्दू आप कैसे बोल लेते हैं?
6: कि अपने असातिज़ा के साथ
2: उर्दू पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं?
6: टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, टोक्यो गाइगोदाई में। 5-6 सालों के लगभग से उर्दू की पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं 1-2 दफ़ा पाकिस्तान भी जा चुका हूँ, तो पाकिस्तान में से भी मैंने उर्दू सीखी है।
2: तो यहाँ कोई मुकाबला हो रहा है?

0: जी सामिन, केंची योनेजू का गीत समंदर की रूहें हमने सुना।
1: अब जापानी मुहावरों और कहावतों पर मुश्तमिल हमारा सिलसिला है जापानी कहावत गरी।
2: इस सिलसिले में हम जापान के जबान जदयाम मुहावरे नशर करते हैं, पेश करते हैं।
0: और आज का मुहावरा है वो गोकरो आरेबा मिजू गोकरो।
2: इसका लफ्जी मतलब है कि अगर मछली पानी के साथ मेहरबान है तो पानी भी मछली के साथ मेहरबान है।
1: और इससे मुराद ये है कि जब आप किसी के साथ मेहरबानी या खैर सगाली से पेश आएंगे तो वो शख्स भी कुदरती तौर पर मेहरबानी से जवाब देगा।
0: मजीद वजाहत यह है कि किसी से आपके सलूक का इन्हिसार उस बात पर है कि वो आपके साथ कैसा रवैया इख्तियार कर रहा है।
1: मुझे अंग्रेजी जबान का मुहावरा याद आ गया कि तुम मेरी कमर खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा।
0: जो मेरी मदद करेगा उसकी मदद करनी है, यानी इस हाथ दे उस हाथ ले। तो सामिन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
3: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
2: आज की महफिल में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी बमबारी से मुतासिर होने वालों का भी जिक्र करते चलें।
1: सामिन, 6 अगस्त बरोज जुमेरात हिरोशिमा और 9 अगस्त बरोज इतवार नागासाकी पर एटम बम हमला हुए 81 साल पूरे हो गए हैं।
0: आज भी उस दिन के बारे में सोचें तो दिल इतना उदास होता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं कि ऐसा भी इंसान हो सकता है लाखों बेगुनाह लोगों की जान मिनटों में ले ले। इस वाक़े ने पूरी इंसानियत को सही मानों में हिला कर रख दिया था।
1: जी, एटम बम इंसानियत के लिए इंतहाई तबाहकुन है। दुआ है कि आइंदा कभी ऐसा सानिया रोनुमा ना हो।
0: इन दोनों सानहात की बरसी के मौके पे जापान में खसूसी तकरीबात होती हैं और जापान हमेशा ही इस सानहे की होलनाकियों के बारे में आगाही फैलाने की काविशें करता रहता है।
2: पूरी दुनिया की खैर और आफियत की तमन्ना है।
0: और सामिन, आइए मिलकर दुआ करते हैं, कोशिशें करेंगे कि अमन को हमने फैलाना है। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि इजाज़त लेते चलें और बताएं कि जापानी बोलचाल के प्रोग्राम आइए जापानी बोलें का क्विज़ जापानी ज़बानदानी शुरू हो चुका है।
2: आप हमारे होम पेज nhk.jp/urdu के तवसुत से इस क्विज़ में शिरकत कर सकते हैं और इसी होम पेज के तवसुत से इसका जवाब भी भेज सकते हैं।
1: होम पेज nhk.jp/urdu पर सबसे नीचे मालूमात की सुर्खी तले एक लिंक है जिसका उनवान है हम आपके आरा के मुंतजिर हैं। इस्तेमाल की शरायत मंजूर होने की सूरत में हिदायत पर अमल करते हुए पैगाम रवाना कीजिए।
0: और अब हमें इजाजत दीजिए।
4: अल्लाह हाफिज़।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9।

0: मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देवसे में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को कामायनी सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाएं जापानी खाना।
0: कामायनी जी, देखिए इस हफ्ते जापान में ओबोन त्योहार की छुट्टियां होंगी, तो लोग अपने अपने गृह नगरों का रुख करेंगे और पूर्वजों को याद करेंगे।
1: वायला जी, ओबोन त्योहार तो है ही, साथ ही अभी गर्मियों में कितने सारे उत्सव हो रहे हैं ना।
0: हाँ।
1: इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि लोग पारंपरिक परिधान में नजर आते हैं।
0: अच्छा, तो आप बात करें युकाता की ना।
1: हाँ,
0: बड़ा अच्छा लगता है ना लोगों को युकाता पहने देखकर, बड़ी सुंदर तरीके से सज धज कर निकलते हैं ना।
1: जापान में आमतौर पर अधिकांश लोग पारंपरिक वस्त्र नहीं पहनते हैं, लेकिन आतिशबाजी, ओबोन नृत्य, उत्सवों या मेलों में जाने के लिए लोग इन्हें पहनते हैं। एक तरह से अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं से जुड़ने का भी अवसर है ये।
0: बिल्कुल सही कहा, और बहुत सारे मौके होते हैं गर्मियों में इन्हें पहनने के।
1: जापान में गर्मियों में विभिन्न इलाकों में तरह तरह के उत्सव होते हैं और उनकी एक झलक मिल सकती है हमारी वेबसाइट पर।
0: जी हाँ, देखिए एक तो है तोहोकू क्षेत्र का उत्सव मोरियोका सांसा ओदोरी, जो 1 से 4 अगस्त तक हुआ था। 208 टोलियों के 26,000 से अधिक सदस्यों ने नाचते गाते बांसुरी और ड्रम बजाते उत्सव में हिस्सा लिया।
1: ओसाका का तेंजिन उत्सव भी है, जिसमें नौकाओं में झांकियों और आतिशबाजी का आनंद लेने के लिए ओकावा नदी के तट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ती है।
0: और इस उत्सव का आयोजन देवात्माओं की शांति, क्षेत्र की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और प्लेग जैसे महारोगों से बचाव की कामना में किया जाता है।
1: दोस्तों, पुराने जमाने में गर्मियों के मौसम में बीमारियों का खतरा रहता था। गर्मी और अधिक उमस के कारण खाना जल्दी खराब हो जाता था, लोगों की तबीयत खराब हो जाया करती थी।
0: जी हाँ, तो इन्हीं कारणों से गर्मियों में बहुत सारे उत्सव होते हैं और उनमें यही कामना की जाती है कि सेहतमंद रहें और बुरी बलाओं से दूर रहें। नाच गाकर, ढोल नगाड़े बजाकर देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती थी, ताकि भगवान दया दिखाकर बीमारी आदि से छुटकारा दिला सकें।
1: तो दोस्तों, इन उत्सवों का आनंद लेने के लिए जरूर हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमें यकीन है कि इनका थिरकता संगीत आपको भी मंत्रमुग्ध कर देगा।
0: जी हाँ, बिल्कुल। और आइए अब बढ़ते हैं पत्रों की ओर। तो सबसे पहले ये पत्र है सुरेश अग्रवाल जी का। लिखते हैं, दिनांक 2 अगस्त के प्रसारण में जब आपने मुझे हिंदी सेवा का वर्षों पुराना नियमित श्रोता बताते हुए जापान आने के लिए कहा, तो सच मानिए वो क्षण मेरे लिए शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। लगभग 50 वर्षों से NHK हिंदी सेवा केवल एक रेडियो प्रसारण नहीं रही, बल्कि मेरे जीवन की एक आत्मीय यात्रा रही है। आपकी ध्वनि तरंगों ने मेरे मन में जापान के प्रति जो अपनापन, सम्मान और जिज्ञासा जगाई, वो समय के साथ और गहरी होती चली गई। हर समर्पित श्रोता के मन में कहीं ना कहीं ये स्वप्न अवश्य पलता है कि जीवन में एक बार उस स्थान तक पहुंचे जहां से वे आत्मीय स्वर वर्षों से उसके जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। उन लोगों से मिले जिनकी आवाजें दशकों से उसके परिवार के सदस्य जैसी लगती रही हैं, किंतु एक सामान्य भारतीय श्रोता के लिए अपनी सीमित साधनों से जापान की यात्रा कर पाना सहज नहीं है। और ये सौभाग्य तभी संभव हो सकता है जब स्वयं NHK अपने उन श्रोताओं में से किसी एक को ये अवसर प्रदान करे, जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी पुरस्कार की चाह के दशकों तक उसके साथ अपना आत्मीय संबंध निभाया है। यदि NHK ऐसा कोई अवसर प्रदान करे तो मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरे लिए ये 5 दशकों से सजोए एक स्वप्न का साकार होना होगा।
1: सुरेश जी, आपकी भावनाओं, विचारों का हम हर तरह से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारी सेवा से जुड़े रहते हुए जापान के बारे में जानने से आपके मन में जरूर ये ख्वाहिश होगी कि एक दिन मैं भी जापान की यात्रा करूं, लेकिन कई कारणों से ऐसा कर पाना संभव नहीं भी हो सकता है।
0: जी, वैसे तो हम यही चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता कभी न कभी जापान की यात्रा करें और जो कुछ हमारे प्रसारण के जरिए उन्होंने समझा जाना है उसका खुद अनुभव करें। आपने जिस निष्ठा और प्रेम से हिंदी सेवा को दशकों तक सुना है और सुन भी रहे हैं, उसकी कोई दूसरी मिसाल ढूंढ पाना संभव ना हो। कामायनी जी, आपको याद है कि एक बार हमारे एक श्रोता होरा जी ने बताया था कि वे जापान की यात्रा से लौटे ही हैं।

0: और अगली बार मिले तो हमसे भी मिलना चाहेंगे।
1: हाँ, उसके बाद तो कोई पत्र नहीं आया उनका, लेकिन ऐसे अगर कोई श्रोता जापान आते हैं तो उनसे हम जरूर मिलना चाहेंगे।
0: जी हाँ,
1: वैसे इसी संदर्भ में हमारे एक अन्य नियमित श्रोता राम कुमार नीरज जी ने लिखा है कि सुरेश अग्रवाल जी का पत्र पढ़ा गया तो मन सचमुच भावुक हो उठा। ये जानकर गर्व भी हुआ कि आज के डिजिटल युग में भी ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने 5 दशकों तक अपनी निष्ठा, प्रेम और विश्वास को बनाए रखा है। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तोता ने बड़े स्नेहपूर्वक सुरेश जी को जापान आने को कहा, ये सुनकर अच्छा लगा। रेडियो जापान को समय समय पर अपने पुराने और सक्रिय श्रोताओं को आधिकारिक रूप से जापान आने का अवसर प्रदान करना चाहिए। मेरा मानना है कि ये केवल एक यात्रा नहीं होगी बल्कि दशकों पुराने विश्वास और आत्मीय संबंध का सम्मान होगा। पत्र काफी लंबा है पर मोटे तौर पर इनका कहना है कि रेडियो जापान हिंदी सेवा को अपने पुराने श्रोताओं को हर वर्ष या प्रत्येक 2-3 वर्षों में कुछ चुनिंदा वरिष्ठ और समर्पित श्रोताओं को जापान आमंत्रित करना चाहिए। आशा है कि भविष्य में रेडियो जापान हिंदी सेवा इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी और अपने पुराने श्रोताओं के लिए कोई विशेष सम्मान योजना अवश्य शुरू करेगी।
0: राम कुमार जी, हमारे सभी श्रोता हमें प्रिय हैं और हम उनका दिल से सम्मान करते हैं, उनकी टिप्पणियों पर गंभीरता से विचार करते हैं और उनका आभार मानते हैं।
1: सुरेश जी, जैसे वरिष्ठ श्रोता हमारी सभा में 4 चांद लगाते हैं।
0: जी
1: जी बिल्कुल, और आपकी अमूल्य राय भी हमें कई दृष्टिकोणों से एक ही विषय को समझने में सहायता करती है। श्रोताओं के बिना तो हमारी पूरी सेवा सुनी है बेजान है।
0: जी हाँ, और जहाँ तक बात है NHK द्वारा आधिकारिक तौर पर किसी श्रोता को बुलाने की, तो ये संभव नहीं है क्योंकि केवल हिंदी सेवा तो है नहीं, कई भाषाओं में सेवाएं हैं और सभी के श्रोताओं को बुला पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले अंक में भी कहा था कि इस समय भारत से बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं और इसका एक प्रमुख कारण है वीजा नियमों में ढील। सबसे पहले तो जब तक किसी जापानी, पहले क्या हुआ करता था कि जब तक कोई जापानी गारंटी लेटर ना दे कि इस पर्यटक की सारी जिम्मेदारी मेरी है, तब तक वीजा मिलना नामुमकिन था
1: या बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन हाँ, अब तो पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। कुछ शर्तों को पूरा करने पर कोई भी अपने आप वीजा आवेदन कर जापान आ सकता है। बल्कि आजकल तो जापान भारतीय पर्यटकों को बढ़ावा भी दे रहा है क्योंकि चीन से पर्यटक आधे से भी कम हो गए हैं, तो सरकार चाहती है कि अन्य जगहों से लोग आएं।
0: जी हाँ, और हम सभी श्रोताओं से यही कहेंगे कि अगर परिस्थितियां बने तो आप जरूर जापान घूमने आए और हमें भी इतला करें, हम जरूर आपसे मिलेंगे।
1: जी, अब उमेश कुमार शर्मा जी की फेसबुक टिप्पणी है, लिखते हैं, आपके द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रम मैंने काफी वर्षों तक जापान रेडियो पर सुने, क्षमा करें, रेडियो पर सुने और अब इंटरनेट से भी आपके विचार कार्यक्रमों द्वारा जान रहा हूँ जिसमें आप जापान के विषय में नवीनतम जानकारियां पेश कर रहे हैं जो मेरे सामान्य ज्ञान में वृद्धि कर रही हैं। जापानी व्यंजनों का स्वाद चखने का मन तो करता है किंतु भोजन बनाने में महिलाएं ही ज्यादा कुशल होती हैं, लेकिन आप इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाते रहें और जापानी भोजन के विषय में जानकारी देते रहें।
0: जी, तो कमायनी जी, अब अगर बात चल पड़ी है आओ पकाएं जापानी खाना की, तो आज हम बनाना सिखा रहे हैं हियाजीरू यानी ठंडा सूप।

0: आओ पकाएं जापानी खाना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जून का महीना शुरू हो चुका है और जापान में मौसम है बारिश का।
1: बारिश वाले दिनों के बीच जब किसी दिन धूप निकलती है तो तापमान बढ़ जाता है और उमस परेशान करती है। ऐसे में लोगों की भूख मरने लगती है।
0: आज के इस अंक में हम बनाना सिखाएंगे हियाजिरू, जो एक तरह का ठंडा सूप है और पुराने समय से गर्मी का सामना करने के लिए खाया जाता है।
1: ये व्यंजन सिखाने के लिए आज भी हमारे साथ हैं पाक कला विशेषज्ञ आकिको वातानाबे।
2: कोनिचिवा, वातानाबे आकिको देसु। क्यों गो शोकाई सुरु हियाजिरू वा निहोन काकुची दे।
0: नमस्कार, मैं हूँ आकिको वातानाबे। आज हम बना रहे हैं हियाजिरू, जो पुराने समय से जापान के विभिन्न क्षेत्रों में लोकप्रिय है। ये मिसो यानी सोयाबीन के

0: पेस्ट के जायके वाला एक ठंडा सूप है जिसमें तरह तरह की चीज़ें डाली जाती हैं और चावल के ऊपर डालकर परोसा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह के हियाजिरू बनाए जाते हैं। तो आज हम दक्षिण पश्चिमी जापान के मियाज़ाकी प्रिफेक्चर में लोकप्रिय विधि से ये व्यंजन बनाएंगे। मिसो के जायके वाले इस सूप में हम डालेंगे मछली के पिसे हुए टुकड़े और तोफू, ऊपर से हम कुछ सब्जियां सजाएंगे और फिर इस सूप को चावल पर डालकर परोसेंगे। इसमें आज हम हॉर्स मैकरल मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे जापान में आजी कहते हैं, और ऊपर से सजाने के लिए हमने लिए हैं खीरा, अदरक और तिल।
1: ये व्यंजन हम चार लोगों के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले चावल बनाने की सामग्री नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 300 ग्राम चावल और 400 मिलीलीटर पानी।
0: सूप में डालने के लिए तैयार रखिए एक हॉर्स मैकरल मछली लगभग 120 ग्राम की और 150 ग्राम तोफू।
1: सूप बनाने के लिए आपको चाहिए 3.5 बड़े चम्मच या लगभग 50 ग्राम मिसो पेस्ट और 500 मिलीलीटर गर्म पानी।
0: और ऊपर से डालने के लिए एक खीरा लगभग 100 ग्राम का, करीब 15 ग्राम अदरक और 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल।
1: इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ा सा नमक और मछली को भूनने के लिए एक छोटा चम्मच तेल।
0: तो सबसे पहले सूप डालकर परोसने के लिए चावल पका लीजिए। ध्यान रहे कि सूप बनाने से पहले ही आप चावल तैयार कर लें।
1: इसके बाद हम मछली भूनेंगे। हॉर्स मैकरल मछली को चॉपिंग बोर्ड पर रखिए। अब मछली के आगे वाले पंखों को उसके सिर की ओर दबाते हुए चाकू से उसका सिर और पंख काट दीजिए।
0: अब मछली की अंतड़ियां निकालनी है। इसके लिए मछली के पेट के सबसे निचले हिस्से में चाकू डालकर उसे चीर लीजिए। फिर हाथ से मछली की अंतड़ियां निकालकर मछली को अंदर और बाहर से अच्छी तरह धो लीजिए ताकि खून के थक्के और बची हुई अंतड़ियां ठीक से निकल जाएं।
1: मछली को अच्छी तरह धोने के बाद एक साफ कागज से पोंछ लीजिए और फिर उसके दोनों ओर हल्के से नमक छिड़क दीजिए।
2: こうして塩を振ると塩味もつくんですが、魚が身が崩れずに。
0: नमक छिड़कने से मछली अच्छी तरह भुनेगी। इससे नमकीन स्वाद भी आएगा और मछली आसानी से टूटेगी भी नहीं।
1: अब हम मछली को भूनेंगे। एक फ्राइंग पैन को मध्यम आंच पर रखिए और उसमें एक छोटा चम्मच तेल डालिए। जब तेल पैन की पूरी सतह पर फैल जाए तब मछली को पैन में रखकर ढक्कन लगा दीजिए। मछली का रंग हल्का भूरा होने तक 3 मिनट के लिए भूनिए।
0: हमने मछली को भूनने से पहले अच्छी तरह साफ कर लिया था, इसलिए इसमें से ज़्यादा बदबू नहीं आ रही थी। और अब हल्का भूरा रंग आने तक भूनने के बाद तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है और बदबू एकदम चली गई है।
1: और 7 मिनट तक मछली को अच्छी तरह पकने दीजिए।
0: अब मछली को एक बड़ी थाली में निकाल कर उसके कांटे निकाल दीजिए। इसके लिए पहले पेट के चीरे में चाकू डालकर मछली को पूरी तरह खोल लीजिए। आपको मछली का मुख्य कांटा दिखाई देने लगेगा।
1: जिस सिरे पर मछली का सिर था उस तरफ से मछली का मुख्य कांटा पकड़िए और उसे खींचकर निकाल दीजिए।
2: この冷汁の中に骨が入ってると嫌なのでちょっと面倒なんですが骨が。
0: अगर मछली के कांटे सूप में रह गए तो उसे खाने में मजा नहीं आएगा। तो थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन ध्यान से सारे कांटे निकाल दीजिएगा। आप उंगलियों से दबाकर देख सकते हैं कि मछली में कहीं कांटे बच तो नहीं गए।
1: कांटे निकालने के बाद मछली के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। मछली की चमड़ी हटाने की ज़रूरत नहीं है।
0: अब सूप बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें तिल के दाने भूनने हैं।
1: इसके लिए तिल के दानों को पैन में डालकर मध्यम आँच पर रख दीजिए। जब पैन गर्म हो जाए तो आंच धीमी कीजिए और तिल के दानों को चम्मच से हिलाइए।
0: भूनने पर तिल के दाने पैन में उछलने लगेंगे। 2-3 दाने हाथ में लेकर देखिए। अगर वो आसानी से टूट जाएं तो इसका मतलब है कि और भूनने की जरूरत नहीं है।
1: अब इन भुने हुए दानों को एक छोटी ओखली में डालकर कूट लीजिए। सारे दानों को अच्छी तरह पीस कर महीन चूरा बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें दरदरा रहने दीजिए।
0: अब चमड़ी वाले मछली के टुकड़े भी तिल के दानों के साथ ओखली में डाल दीजिए और कूटते रहिए।
1: इसके बाद मिसो पेस्ट डालकर थोड़ी देर और पीसिए।
0: अब आपके पास तिल के दानों, मछली और मिसो पेस्ट का मिश्रण तैयार हो गया होगा।
1: इस मिश्रण में 500 मिलीलीटर गर्म पानी दो भागों में डालिए। सारा पानी डालने के बाद मिश्रण को अच्छी तरह मिला लीजिए।
0: गर्म पानी डालने से मिसो पेस्ट का स्वाद निखर आएगा और मछली के कारण सूप में बढ़िया जायका आ जाएगा।
1: अब इस सूप को फ्रिज में रख कर ठंडा कर लीजिए।
0: इतनी देर में हम सूप के लिए तोफू तैयार कर लेते हैं। तो तोफू के टुकड़े के 3 बराबर हिस्से कर लीजिए। इससे उसे पकाना आसान हो जाएगा। फिर इन टुकड़ों को गर्म पानी में 1 मिनट तक उबाल लीजिए।
1: इसके बाद तोफू के टुकड़ों को छलनी में निकालिए और ठंडा होने दीजिए। फिर हाथ से तोफू के लगभग 1 सेंटीमीटर आकार के टुकड़े कर लीजिए।
0: सूप और उसकी मुख्य सामग्रियां अब तैयार हैं। अंत में ऊपर से सजाने की चीजें यानी खीरा और अदरक भी तैयार कर लेते हैं।
1: खीरे को लगभग 1 मिलीमीटर मोटाई वाले गोल टुकड़ों में काट लीजिए और अदरक का छिलका उतार कर उसकी बहुत पतली पट्टियां बना लीजिए।
0: अब फ्रिज में रखा ठंडा सूप निकालिए और परोसने से तुरंत पहले उसमें तोफू डालकर ऊपर से खीरा और अदरक सजा दीजिए।
1: परोसते समय एक कटोरी को चावल से लगभग आधा भरिए और ऊपर ढेर सारा ठंडा सूप डाल दीजिए।
2: 皆さん、上手に作れそうですか？冷や汁に使う魚はアジでなくても。
0: तो दोस्तों, अब आप ये स्वादिष्ट सूप बना लेंगे ना? हॉर्स मैकरल मछली की जगह आप मैकरल मछली या सार्डिन मछली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनसे भी ये सूप बहुत लजीज बनता है। और इस व्यंजन को ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो गर्मी में आपको ज़्यादा पसीना भी नहीं आएगा। तो गर्मी के मौसम में इस ठंडे सूप हिया जीरू का आनंद ज़रूर लीजिएगा।
3: दोस्तों, आज की रेसिपी गर्मियों में भी आपको तरोताज़ा रख सकती है। और अगर आप मछली वगैरह नहीं खाते हैं तो आप इसमें सोया की बड़ियां या दाल की बड़ियों को डाल सकते हैं। जरूर बना कर देखें।
4: हाँ, और इस तरह से अगर बड़ियां डाल देंगे तो मुझे लगता है प्रोटीन की जो भरपाई है ना, हाँ, वो हो जाएगी, वो
3: पूरी हो जाएगी।
4: जी, हाँ, जी, जी, जी। तो जरूर बनाकर देखें। और श्रोताओं, अब देखिए समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखते रहें। और अगर पत्र लिखना झंझट है तो फेसबुक पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। आपके पत्रों की हम प्रतीक्षा में हैं। तो फिर होगी मुलाकात, तब तक अनुमति दे वायला कवानों को
3: और कामायनी सिंह को
4: सायोनारा, नमस्कार।